0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनु पर्ने, धेरै पछि के आज त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख के कथा सुनाउँछु?
1: लो सुना सुना।
0: ल